0: rewind for today's hits and all-time favorites. 102.7.
1: It's East FM. कैनेडा सरकार जमानत अते सजा दे कानूनां विच सख्ती लिया रही है। हिंसक अते बार-बार अपराध करन वालियां नूं भाईचारे तों दूर रखण लई सिस्टम विच सुधार तां जो तुसी घर विच सुरक्षित रहो। canada.ca/surakhit-canada ते होर जानो। कैनेडा सरकार वल्लों इक सुनेहा।
2: You're listening to East FM 102.7
3: CJRK.